रहो प्रहलाद रहो दाल की छोरी ममू यही वर्ष महापति मरि गए मेरो विपत्ति के कहूँ चल्की मथी विवाह करी दिए बुढा कुरुती कना मेरै वर्षमा

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: 98 41 80 56 42। रमाइलो घर रिसोर्ट भीमेश्वर नगरपालिका ओडा नम्बर 6 चोथाङ दोलखा।
1: यो रेडियो सैलुङको समय सूचक हो।
2: यति बेला दिउँसोको 1 बजेको छ।

नमस्कार रेडियो सैलु सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म बदे प्रसाद साहबबाट आज विक्रम सम्वत 2083 साल आषाढ शुक्ल पक्ष सन् 2026 जुलाई 18 तारिक श्रावण 2 गते शनिबार चौथी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षण कल्पय भरी।

राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मंडाखुन सवले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कई काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढ़ाले पनि कृति उज्ज्वल होस सुत सहित।